जगत पिखारी फिर तू है सबको दाता राम।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

दुख सुख पाइए इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जी।

दूर कथना कथि न आवे टोट कत कत कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा।

पछताए। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध।

कोई जे को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाई मन्ने पथ स्यो प्रगट जाई मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन

सूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै ऊपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस ते पार।

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाए।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा।

एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। सत सुहाण सदा मन चाओ, कमण सो वेला वखत कमण, कमण थित कमण वार, कमण से रुती माह कमण, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती।

जान करता सिर ठीक ओ साची आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आ

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वी।

देवतियां दर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सू।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश निसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पाई।

जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

गावन पुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बीचारी, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारी, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नान

ती रात खसम बसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुर सत पुरख।

सिखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत, जित हर रस पाया,

निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो।

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू

रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंद

संत टहल की बेला, इहां खाट चलहु हर लाहा, आगे बसन सोहेला, औद कटै

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरु।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगियाईया सत पर

जित खादै तन पीड़िय मन मह चलह वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद संत।

करमंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी और आखण बहुत अपार नानक सच्चा

राग महला पहला कुंगू की काया रत्ना की ललता अग्रवास तन साहस अठसठ तीर्थ का मुख टिक्का तित घट

आखण आखिए आखण तोट ना होए मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्य सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखिया हर जप एक पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले सुख होए। निज कार महल पछाणिऐ नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिऐ अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए हौसा।

लग दुबदा लागे पच मोए अंतर त्रिशना अग गुर राखे से उबरे होर मुठी धंदै ठग मुई प्रीत प्यार गया।

गुरमुख नाम सलाहिए हौ मैं निवरी पाहि रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया

जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहू सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणंजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नित रोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह।

राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

दुष्ट किरखा करे हिन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर तरती।

क्या होए आपे सच भावै तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जा के रुख बिरख आराओ जेहि धात तेहा तिन नाओ फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज

अस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाए बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे। हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद्ध फिरै ओना तिल ना तमाए। जो प्रभ भावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै

सच घट प्रगट होए, अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए। सच मिले से ना विछड़ है, तिन निज घर वासा होए। मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए, सतगुर सच प्रभ निर्मला

पार्स परसिय पार्स हुई ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार निर

हे निर्मले हौ सद बलिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसे रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हाथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरे हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहु जिदू पाइए सच सोए असुर संगारै सुख वसै जो तिस भावै सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मन मुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का शब्द।

ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाय सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाओ नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाओ श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावणी ज्यों दुहागण तन शिंगार चीजै कंतना आवई।

संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाई रहाउ गुरमुख सदा सुहागनी पिर राखिया उर तार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार शोभावंती सुहागनी जिन गुर का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागै का उदौ होए अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हूं मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम ते आई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जां फिर जाने अपना तन मन अगै धरे सुहागनी कर्म

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाईए, जे लोचै सब कोय रहाउ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाई, बिन गुर नींद ना आवई, दुखी रहन विहाई।

अंते हुए सखाई अपने मनचित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वत्सल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाउ कर कृपा घर आया आपे मिलिया आई गुर शब्दी सालाही है रंगे सहज सुभाई सच्चे सच समाया मिल रह ना विछुड़ जाय जो किछ करना सो

रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाव जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया

कमाए जात सत संयम नाम है विण नाम है निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए।

मन तन सीतल साच सियो सास न बिरथा कोय मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत।

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना पौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिने आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे।

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावे है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिऊ रह समाय रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाय गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस।

मनमुख कंत ना पछाणे तिन क्यों रहण विहाय गर्भ अटिया तृष्णा जल है दुख पाव है दूजे पाए शब्द रतिया सुहागनी तिन विचो हों मैं जाए सदा पिर राव है अपना तिना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम ना पाया जाय अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाय आव हो मिल हो सहेली हो मैं पिर देहो मलाय पूरे भाग सत गुर मिले पिर पाया सच समाय से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घरवर पाया अपना हम मैं दूर करे नानक शोभा वंतिया सुहागनी अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर राव है अपना।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हुए। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होए। श्री राग महला तीजा, जग हो मैं मैल दुख पाया। माल लाग

का निर्मल हुए मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हऊ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हौ तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जां देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हौ गुर सरनाई तह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

रहाउ दुख भुख नह व्यापै जे सुख दाता मन होए कित ही काम न सिजिय जा हृदय सच्चा सोए जिस तू रख है हाथ दे तिस मार न सकै कोए सुख दाता गुर सेवी सब अवगण कड्डै धोए सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव साधु संग मसकते टूठै पावा देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार ने मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इकस स्यों मन मानिया ता

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो है माथ मेरे मन एक सस्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिस को पूर्व लिखिया किन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा करता हां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवा सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपा छड कै गुर की चरणी पाह मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ आठ पैर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिए जम की फास सुख दाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास बहुतो बहुत बखान।

सच देव हो अपना नाव। श्री राग महला पंजवा। नाम त्याए सो सुखी, इस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए। साध संगत कै घर वसै, एको सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम त्याए, नाम सा

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा।

मात पिता इकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान अनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

हुए। जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे परदान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान। जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आय। अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यो निवलाय। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय। गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाय। मेरे मन गुर शब्दी सुख होय, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ। मन कियां इच्छा पूरियां पाया नाम निदान। अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान। काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम। कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान। सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार। हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार। पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुरु जी मिले पाइए शब्द निदान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं। एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए। सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह। कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह। चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव। मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव। नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव। हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय। ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहिया समाय। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाय। अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय। भाई रे मीत करहो प्रभ सोय। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार। जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात। सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद। किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार। सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिय
अंतर रख उर धार मेरे मन हर बिन अवर ना कोय प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक जिन कीता तिसह न जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहया अंतर हौ मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवीस हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होवै भाग कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागती सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने गुर हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा।

पास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाय, मेरा मन तन भुख आते अगली, कोई आन मलावे माय, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस पंडार,

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा। संत जन हो मिल भाई हो, सच्चा नाम संभाल तुसा बंद हो जी का, एथे उथे नाल गुरपुरे ते पाई है। अपनी नजर निहाल कर्म प्राप्त तिस होवे, जिसनो होए दयाल मेरे मन गुरजे वडे अवर ना कोए, दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर सालाही है, करन कारण समरथ से मथे निचल रहे, जिन गुर धारिया हाथ गुर अमृत नाम पी आलिया। जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है। सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना, जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे। खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन मेहमंड। श्री राग महला पंजवा, मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध, भाई मीत सुरद किए बिख्या रचया बाद। जांदे बिलम ना हो गई विण नावै विस्माद, मेरे मन सतगुर की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ, ज्यों कुकर हरकाया तावै दह दिस जाय। लोभी जंतना जाने पाख अपाख सब खाय, काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाय। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाय, तृष्णा पंखी फासिया

हर जानो हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

प्यार, क्या थोड़ी बात गमान रहाओ, जैसे रैन परहुनी उठ चल सह पर बात। क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करह जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़। लख चौरासी भ्रमतिया दलब जन्म पायो ए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए। श्री राग महला पंजवां, पिचर वसह सहिलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। मन बैराग भया दर्शन देखण का चाओ, तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात, जा उठी चल सी कंतड़ा तां कोई ना पुछे तेरी बात। पे यड़ै सहो सेव तू सहरड़ै सुख वस, गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सहरै वंजना सब मुकलामन हार, नानक तन सुहागनी

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाउ दुख कलेश ना पौ।

देख दर्शन मन साधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाव काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहु कीर्त करला कथन।

बलिहार ने तुस दिता अमृत नाम रहाओ। जिन तू सेविया पाओ कर से पुरख सुजान। तिन्ना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान। गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्म दान। आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुपाई। सच्चे से तीरतिया दरगाह बैसन जाय। करते हाथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाय। सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध बबेक। सर्ब निरंतर राव रहिया जप नानक जीवै एक। श्री राग महला पंजवां गुर परमेश्वर पूजिए। मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का। सबसे दे आधार सतगुर बच

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे, पूर्ण होए काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार, गुर

कथन हार, जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावनी साच नाम दे रास।

की तड़ा लिखना जाने कोई जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावे रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना ढाही

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए रत्ती रंग।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू

ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਤ ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣ।

जाली बद कहात गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ सचो सच्चा आखी सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति परगास हुई।

वाद विरोध सलाहणी वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी है तीरथ कीचे वास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जेहा

रहाउ गिण राशी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार गिण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वणजारियां स्यों वणज कर गुरमुख।

सोहु प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर फिरे आऊं जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा।

निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर सहज ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

जगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जी मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंधे साधु।

दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए है, शब्द भेद सुख होए, वेद पकारे वाचिए, बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए, हौं सद बलिहारे जास, चहों जुग मैले मल भरे, जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूणिया, मुँह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया, अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर वसे, हों मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले, जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला, सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग, हर जप नाम त्याए तू, जम डर पै दुख भाग, दुख घणो दुहागनी, क्यों फिर रह सुहाग, भाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निदान है, गुर दिया बल जाऊं रहाव, गुरमत पत साबास तिस, तिस कै संग मलाऊं, तिस बिन घड़ी ना जीवन।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उधार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होई रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनहु वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरै ता पिर रावै नार इकत तागै रल मिलै गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजै खिन खपै

तोलिए कथन ना पाया जाए। व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए, कार कमाव है सच की लाहा मिले र जाए। पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कथन कहण ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले।

सत्र रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बू

आपे खवै दुध कौ खफण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रि भवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरे, जे गुण का गाहक होए, खेल गए से पंखनु, जो चुग दे सर तल, कड़ी के मोहत के चलना, खेलन आज के कल, जिस तू मिल है सो मिले।

माया परम भुलाई, परम भुली दोहागणी, ना फिर अंक समाई रहाउ, भूली फिरै दसंतरी, भूली ग्रह तज जाय, भूली डूंगर थल चढ़ै, पर मैं मन डोलाय, तुरहु विछुनी क्यों मिलै, गर्भ मुठी बिललाय, बिछड़िया गुरमेल सी, हर अस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी, हर गुण नाम आधार, ज्यों पावै त्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुलिए, भेखी बहुत अभमान, तीरथ नाता क्या करे, मन मह मैल गुमान, गुर बिन किन समझाई है, मन राजा सुनतान, प्रेम पदार्थ पाई है, गुरमुख तत विचार, सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचो खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाई है आप

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावे है सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी।

चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिंगार खेहू खेर लाइए छोड़ चल घर बार महर मलूक कहाइए राजा राव के खान चौधरी राव सदाइए जल बलिए अभमान मनमुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हौमै कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाही गुर राखी से निर्मले शब्द निवारी पाही नानक तरिये सच नाम सिर छाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह मनमुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना

खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुंच शब्दहा माहे वखाणिए बिरला ता बूझै कोय नानक वखाणे बेनती जल तल मही अल सोए अल्लाह अलख।

राम तिसनु वाखिय जिस शेष न होवी लेख असमान तरती चलसी मोकाम ओही एक दिन रव चल निस सस चल।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया जिस स्यो राता तै सो हुए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुर

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

गुर कै भाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमा।

सोहनी गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रत्ती दर सच्चे सच्यार। आए से परवान है सब कुल का करहे उदार। सब नदरी कर्म कमावंदी नदरी बाहर ना कोई। जैसे

राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले

सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाए सदा फिर निह चल पाईए ना ओ मरे ना जाए शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाई बिन शब्द जग दुखिया फिर मन मुखा नु गई खाए शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिर है समाध ना लगे सुपाई तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुगदा माया जाए माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बद है हम मैं कर्म कमाए बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाए बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए शब्दे हम मैं मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वश्चल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सालाही है कर्म परापत होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए मनमुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसह मन आए मन रे नाम जपो सुख होए गुर पूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई रहाओ परम गया पहु भागिया हर चरणी चित लाई गुरमुख शब्द कमाई है हर वसै मन आई कर महल सच समाई है।

है पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुरु भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए,

पंडित पड़ पड़ वाद बखाण है बिन गुर परम पलाई लख 84 फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार सहजे ही सूजी पई सच्चे शब्द अपार आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार सहजे अधिष्ट पछाणिय निरप

हो शब्द समाय श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना।

राम पछाणिया गुरमति निज घर वास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा हुए सच्ची साखी उपदेश सच

करी ना किस होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार।

पुरख सिमरत तरिया शास्त सिमरत वेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोग भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग दोहा सिनिया का खसम आप अवर ना दूजा थाउ सतगुर तुठ पाया नानक सच्चा नाउ तेरी राग महला पंजवा घर पंजवा जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाउ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच्छ पयाल जियो हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिले परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया तब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाऊ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया सहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवे नाऊ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस पावे तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुद आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर सियों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जे वड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाणदा दुइया कागल चेतना जानदा हर इक तै कारै लायोन ज्यो भावे तिवै नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हौ हो आ माहर पिंड दा बानियां दे पंज शरीक जियो हौ आया सामै ते हंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा को गगराऊं जियो हौ वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हौ तुद विटहो कुर्बान जियो हर इठे नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुर सिखा लहंदा पाल कै पैर धुआं पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो।

दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठिया, तुसे आपे लयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रजान दा, सब सुखाली बुठिया, एहो हुआ हले मीराज जियो।

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा, अंदुले नाम ना चेता राम नाम काटे अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, सर हंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जिन्हें बन जा रहा मित्रा, आम कटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया सब किछे अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, बिरद भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही, रही परा कौताना गुणी अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुखे आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आई चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण ओड़क आया तिन सहया बन जा रहा मित्रा, जर जरवाना कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा, अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे।

हमारे, मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की वृथा सारे, नाथ के नाते सब कै साथे, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल संत, सुंदर स्वामी ताम, भगत है विश्राम, आसा लग जीव ते जियो, मन तने गलतान, सिमरत प्रभ नाम, हर अमृत पीवते जियो, अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते, बिकै बन फीका जानिया, भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे, साध संगत निध मानिया, सर्ब सो सुख आनंद कन प्यारी, हर रतन मन अंतर सीवते, एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन ना जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाईआ, हर किने न पाया नाउ। विच हऊ मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एलस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैली। हर आपे भरम भलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हौं बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर गुठड़ाहे। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याव हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन बणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्याव हो सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल सलोक महला तीजा, रागां विच श्री राग है। जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसै। निःचल मत अपार, रतन अमोलक पाया। गुर का शब्द बीचार, जेवा सच्ची मन सच्चा। सच्चा शरीर अकार, नानक सच्चै सतगुर सेवै। सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया, वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी।
हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भव दूर कर हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखे बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भव बिकम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदियां क्या चले तिस नाल इक जागन दे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिद्ध

तब आपे तुदे उपाय कै आप कारे लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई हर तुदों बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्याव संत जन हो जो लै छुड़ाई सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इकाशाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिख पाए महला दूजा जिस प्यारे स्योने हो किसे आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार ता कह पाछे जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा तेह तिर मौजूद महला तीजा गुरसभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रह हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराद दे तिन्हों कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कह रंग रहै कबहू ना टूट स्नेहो कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चे पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो की

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवै अंदर धोखा नींद ना सोवै जे तन खसमै चलै रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजै लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सपाए भगती रंग न उतरै सहजे रह समाए पौड़ी सृष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ढाया तुद आपे पावै सू करह तुद ओतै कम ओए लाया इक ना सच बुझायो न तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटिए फिर आवै जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधोले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाए नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माही बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाव पाईऐ मनमुख मोहि विनाश ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

कर्म परापत होए, सच रते गुरु शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहज समावै सोई महला तीजा। सो भगौती जो भगवंत जान है, गुर प्रसादी आप पछाण है। धावत राखै इकत घर आण, जीवत मरै हर नाम बखाण। ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा। अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत संगत सिंह बाद रचाए, हर दिन दुखिया दूजे भाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया, से कर ना सुवाही। सतगुर जिनी त्याया, से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया, तिन जम डर नाही। जिनको हुआ कृपाल हर, से सत

जननी जानक सुत बड़ा होत है, इतना कुमा जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तार, पेखत ही जमराव हसे। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत निश्चो मरना। रमैया जपो प्राणी, अनत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै ता लागै भाव। परम भलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै, इत संगत नाही मरना। हुक्म पछाण ता खसमै मिलना, रहाउ दूजा श्री राग त्रिलोचन का। माया मोह मन आग लड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया। कटंब देख बिकसह कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा। दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए। कोई कोई साजन आई कहे, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए। मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं। माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, देखियले धर्म राहो। तह कर दल करन महाबली,

दा बदत तरलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बा

ते नारे गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस।

कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ताते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तौ पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी। शरीर अराध मो को विचार देहू, रविदास समदल समझावे को। राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद, हर हर नाम मैं हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चल। गुरपूरे हर नाम दड़ाया, हर निश्चल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

करहो प्रित पाला। मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल।

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हूं मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दाते नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरे अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइय, मिल सत संगत हर नाम त्याइय, नानक हर कथा सुनी मुख बोली,

तम दस्ते तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुरु विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरे हर नाल देखा लिया हौ सतगुरु विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवां चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर हुआ देखे सारिंग पानी तन सो देश जहां

रहाव। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है त्रिय तुद भगवंता। मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाव। भाग होवा गुर संत मलाया, प्रभ अवनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाव। राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी जित तुद संभाली। सो काम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित हृदय तू गुठा। सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निध तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देहे सो तृप्त अघावे। सोई भगत तुम्हारा जियो, सब को वास्ते तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है बुठा, सबे सांझी वाल सदाइन। तू किसे न दिस है बाहरा जियो, तू आपे गुरमुख मुक्त कराए। तू आपे मन मुख जन्म पवाए, नानक दास तेरा बलिहारे। सब तेरा खेल दसाहरा जियो, माज महला पंजवा। अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महतारी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर किर अपने ग्रह में आया, जो लड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संतो, गुरे अनपो पुरख दिखारिया जियो। आपे राज ने आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पकारिया जियो। जेहा डिठा मैं तेहो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया। ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। माज महला पंजवा, जित घर पिर सुहाग बनाया। तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बनोद तितै कर सोह। जो धन कंत शिंगारी जियो, सा गुणवंती सावट भागण। पुत्रवंती सीलवंत सुहागण, रूपवंत सा सुगण बचखण। जो धन कंत प्यारी जियो, अचारवंत साई प्रधानी। सब शिंगार बने तिस ज्ञानी, सा कुलवंती सा सबराई। जो पिर कै रंग सवारी जियो, महमा तिसकी कहन ना जाए। जो पिर मेल लई अंग लाए, फिर सुहाग वर अगम अगोचर। जन नानक प्रेम साधारी जियो, माज महला पंजवा। खोजत खोजत दर्शन चाहे, पांत पांत बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मलावे जियो। खट सासत बिचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीरथ इशनाना। निवली कर्म आसन चौरासी, इन मह शांत ना आवे जियो। अनक बरख किए जप तापा, गमन किया धरती परमाता। एक खिन हृदय शांत न आवे, जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो। कर कृपा मुहि साध मलाया, मन तन सीतल धीरज पाया। प्रभ अवनासी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा। अगम गोचर अलख अपेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा। हर त्यावो हो गुरमुख गाती जियो, गुरमुख मधसूदन निस्तारी। गुरमुख संगी कृष्ण मरारी, दयाल दमोदर गुरमुख पाईए। होरत कितै ना भांती जियो, निरहारी केशव निरवैरा। कोट जना जाके पूजह पैरा, गुरमुख हृदय जाके हर हर। सोई भगत एकांती जियो, अमोग दर्शन बेअंत अपारा।
वड समर्थ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपियै तित तरियै, गत नानक बिरली जाति जीओ, माज महला पंजवां। कहया करना दिता लैना, गरीबां अनाथां तेरा माणा, सब किश तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत कौ बल जाई जीओ, भाणै उजड़ भाणै राहा, भाणै हर गुण गुरमुख गावा, भाणै भरम पवै बहुजूनी, सब किस तिसै रजाई जीओ, ना को मूरख ना को सियाणा, वरतै सब किस तेरा भाणा, अगम अगोचर बेअंत अथाहा, तेरी कीमत कहन ना जाई जीओ, खाक संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आगावै, नानक मिलन सुपाई जीओ, माज महला पंजवां। दुख तदे जां विसर जावै, भुख व्यापै बहु बिद तावै, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जीओ, सतगुर मेरा वड समरथा, जिए संभाली तां सब दुख लत्ता, चिंता रोग गई हो पीड़ा, आप करे प्रतपाला जीओ, बारक वांगी हों सब किश मंगा, दें दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जीओ, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हिरदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जीओ, माज महला पंजवां। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊच अथाह बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हों जीवा जीओ, दुख भंजन निदान अमोले, निरपो निरवैर अथाह अतोले, अकाल मूर्त अजूनी संभो, मन सिमरत ठंडा थीवा जीओ, सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मन तृपतायन, गुरमुख अमृत पीवा जीओ, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, एह समत गुरु ते पाई, नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परीवा जीओ, माज महला पंजवां। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, धन मूरत चसे पल घड़िया, धन सो उए संजोगा जीओ, उदम करत मन निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जीओ, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप बखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर ना कोई होएगा जीओ, अमृत रस हर गुरते पिया, हर पहनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमाशे, नाउ नानक कीने भोगा जीओ, माज महला पंजवां। सगल संतन पह वस्त इक मांगो, करो बिनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया, देहो संतन की तूरा जीओ, तुम दाते तुम पुरख बधाते,

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जीओ दर्शन पेखत पए पनीता। सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना। गुर कृपा ते सच त्याई जीओ। जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जीओ। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जीओ। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जीओ। नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनास।

ओत पोत सेवक संग राता, प्रभ प्रतपाले सेवक सुखदाता, पानी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो, अपने ठाकुर जो पहराया, बहोर ना लेखा पुछ बुलाया, किस सेवक कै नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौ हर जियो, माज महला पंजवा, सब किस कर्म है बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पलाही, गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया, सो अंतर बार सुहिला जियो, चिम चिम वरसै अमृत तारा, मन पीवै सुन शब्द बीचारा, अणद बनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के ला जियो, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते

संग जोत मलाया कहो नानक भ्रम कते कवाड़ा बहुड़ ना हुई है जौला जियो माध महला पंजवा तिस कुरबानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आरा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभला दे जियो सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुद बदा तुद बिन अवर ना पा।

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर निहालिए दियो। माज महला पंज।

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किन बिख काट हुआ मन निर्मल

सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर बिरता कोई ना।

अल्ला सगले तृप्त अगाए जीव वाण त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जीव माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुए, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीतलाया, गुरपूरे बजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो, माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मन है अधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टेटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण।

राम ठाकुर अत पारी तुमरे कर्तब तुम ही जानहु तुमरी ओट गोपाला जीयो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे।

गुर प्रसाद मन धारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सोई।

सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपी जीव सब किश बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करहु मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जीव सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

मिल गाव है गुण अगम अपारी, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सोत्या यह जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के

कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो। अपने जी जंत प्रित पारी, ज्यों बारक माता सम्हारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो। जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी, जे थिन मह सगल उदारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारी, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संतां से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल सब तृपताणी।

दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जीओ माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सभी सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाध लगी लिव्य अंतर सोर

मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसम कह पाणे जीओ हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारी नानक दास किए प्रभ अपने।

गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, आपणिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन,

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरनी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उत्तर कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवे बिनसिया भ्रम पहु तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे।

करावणिया, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणी।

मैं बाहर गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावी सच सिंगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाई जिसनो नदर करे तिस गुरु मलाई किल बिख काट सदा जन निर्मल।

सदा नाली, गुर प्रसादी को नदर निहाली। मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा, कर किरपा आप मनावणिया, माया मोहे एहो जग सुत्ता।

लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई, नानक नाम त्याए सच राती, जो तिस भावै सो कार करावणिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवट्टी लावणिया। हों वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माही निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा। गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई। सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा। प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे

कह आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविद माया, चौथी पौड़ी गुरमुखी उची, सचो सच कमावणिया। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवै, सच्चे जाए समावणिया। सच्चे बाजोहों को अवर ना दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख होवै सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया। जी जंत सब सरण तुम्हारी, आपे धर देखै कच्चे।

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै।

मन वसाई हम दिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

0: आए आए नहीं बुझै, मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नामे जन्म गवावणिया।
1: सच करनी शब्द है सार,
0: पूरा गुर पाईए मुख द्वार। अन दिन बाणी शब्द सुनाई, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती।

गुरमुखो वैसो इकस सिंह निभलाई, दूजा भरम गुर शब्द जलाई, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, आनंद रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई, गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह है।

शब्द बड़याई देवनिया रहाउ वेला वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवया सच वड्याई गुर कृपा ते सच पावनिया पाओ भोजन।

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोए ना पावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईऐ, सहजे मन वसावणिया, रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाई, जेहि मनसा कर लागै तेहा फल पाई, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरै भाग मलावणिया, इहो मन मैला इक न त्याई, अंतर मैल लागी बहु दूजै पाई, तट तीरथ दसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरै होमै मल लावणिया, सतगुर सेवे ता मल जाई, जीव तमरै हर स्यों चित लाई, हर निर्मल सच मैल न लागै, सच लागै मैल गवावणिया, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे है, फिर बिस्टा माही पचावणिया, मुक्ते सेवे मुक्ता हुए, हौ मैं ममता शब्द देखोए, अन दिन हर

बिद माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सत संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पात सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओ पत होए। गुरमुख वरत है सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम पलावणिया।

हर पाई, हर सियो सहज समावणिया रहाउ। पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया। गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी। गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया। इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली। जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा। दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत।

पावणिया। किस बाजहू सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला।

आई अमृत नाम दिया वणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा लैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर पर

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया। माघ महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा त्रिपतासी कर कृपा तृष्णा बुझावे।

बनाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा,

अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजे भाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए हन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवे जिसनो आप पी आए गुर प्रसादी सहज लिव लाए पूरन पूर रहया सब आपी गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीत ने आपे गोई नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाई।

सच राती सच सुन आख बखानिया मनसा मार सच समाणी इन मन दीती सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावनिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावनिया जो सच राते तिन सची लिब लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावनिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावनिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावनिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतह सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेख्या वर्ण ना कोई गुरमति आप

प्रगट वरतै सब थाई ज्योति जोत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे ता त्रे पवन सूजै।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई वाणी वज्जे शब्द बजाई गुरमुख भगत।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

बहु कर्म कमावै मुक्त न पाई, देश अंतर भवै दूजै भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राखै ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हौ मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया। माज महला तीजा, इस गुफा मह अखुट भंडारा। इस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे। गुर शब्दी आप वियावनिया, हों वारी जियो वारी। अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा। गुरमती अमृत पी आवनिया, रहाओ। हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मा

चार दुख पाए मन मुखे अंधे सूझै नाही फिर घेरे आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हौ मैं मैल जाए बैस सुथान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हउमै मार बंधन सब तोड़ै गुरमुख शब्द सुहावणिया। हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। रहाउ गुरमुख जीवै मरै परवान आर जा ना सीजै शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरै कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहै दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख आन दिन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा

कराए गुरमुख हिरदै उठाए आप आई नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुर ते पावणिया माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा शब्द दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हौ मैं भरम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती, गुर किरपा ते पावणिया। गुर कै शब्द इहो गुफा विचारी, नाम निरंजन अंतर वसै मरारी। हर गुण गावै शब्द सुहाई, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजै भाई कर लाई, नाम भूले दे सजाई। कड़ी मोहत का लेखा ले वै, रतियों मासा तोल कढावणिया। पे अड़ै फिर चेते नाही, दूजै मुठी रोवै ताही। खरी कवाले कुरूप कलखणी, सुपने फिर नहीं पावणिया। पे अड़ै फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया। कामन फिर राख्या कंठ लाई, शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीते नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द स्वामणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंदे से।

कै शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते।

मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चित ना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महागुबारा, फिर आवन जावनिया, आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावनिया। माज महला पंजवां कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर।

आज महला पंजवां कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो भक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जीओ किन बिद बाधा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जीओ कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगटाए जीओ कौन सो अखर जित धावत रहता कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जीओ गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भक्ता तन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जीओ होमै बाधा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जीओ गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै गुरमुख बिद प्रगटाए जीओ गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जीओ सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जीओ माज महला पंजवां प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

गुरमुख मन तन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म।

कमलावती उपजह नाही दाम। हर नाह ना मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से।

हेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन हसाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाई वगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनकै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही चेत जित दिन देहे बिनससी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड खड़ोते खिने माही जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर मन ते जाए गुमान।

सलाहिए जिसनो तिल ना कमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगहा सच खरी। सर्व सुखा निद चरण हर भौजल बिखम तरी, प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे, पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे।

आप त्याग सरनी पवां मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर पिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरे पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आदि जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं समार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिकीन जिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाऊ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाऊ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाव वार माज की तथा सलोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सलोक महला पहला गुरदाता गुर हिवै कारु

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए, तू आपे खेल करह सब करती, क्या दूजा आख बखानी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले है, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है, पौड़ी तुद आपे जगत अपाय कै, तुद आपे तंद लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुद आप हो जगत खुआया, जिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया, सहसा एहो संसार है, मर जम्मै आया जाया, बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जा तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना, विण हत्थां करना जीबै बाजो बोलना, इउं जीवत मरना, नानक।

कहया कथना भरिया पर पर धुआ आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा हुए कै दसी रा है सब समहाए साथ है अग्गे गया मुहे मुह पाई सो ऐसा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हामा ता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाई मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रत्न पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगै करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावे होए मुस्लिम दीन महाने मरण जीवन का भरम चुकावे रब की रजाए मन्ने सिरे उपर करता मन्ने आप गवावे तौ नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहि निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम निवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलक घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीओ सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीओ पर्वत।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे दे है दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

लश्कर क्या नेव खवासी आवे महली वास नानक सच्चे नाम वेण सबे टोल वडास पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए मोहरा हुए हाथ मरिए चखिए सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए हुक्म मन्ने सिरदार दर दी बाणी है हुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बीचार शब्द सुनाया एक होए असवार एक ना साखती इकनी बदे पार इक ना ताखती सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़ सन की सारा चिथिया कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसन आए बहिठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ महला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए खुंडा अंदर रख कै देन सो मल सजाए रस कस टटर पाई।

सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया विस्ता अंदर वास साधना जानिया बिनमावे दुख पाए आमन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सीहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाले काह काहो खान तिना मास खवाले एह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले तां के असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाही एक नाशक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कारे लाग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावे गावे, तुद भावे जल नावे, जा तुद भावे

सिख कहावै जां तुद भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जां तुद भावै तेग भगावै सिर मुंडी कट जावै जां तुद भावै जाहे दसंतर सुन गल्लां घर आवै जां तुद भावै नाहिर चावै तुद पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड कमावै महला पहला जां तू वड्डा सब वडियाईयां चंगा चंगा होई जां तू सच्चा तां सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चुवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है सलोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अपुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलै तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहा।

गुण गाहक एक वन भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला।

घट दर्शन कह भीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्नी नाउ बसंक दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक जुग जुग एक मन वसावना सलोक महला दूजा मंत्री होए अठूहिया नागी लगे जाए आपण हथी आपने देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अती हूं तका खाए गुरमुख स्यों मन मुख अड़े डुबे हक न्याय दुहा सिरिया आपे खसम वेखे कर व्योपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाए महला दूजा नानक परखे आप कौ ता पारख जान रोग दारू दोवै बुझे ता वैद सुजान वाट ना करी मामला जाने मेहमान मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर समझे आगास को।

गारिया करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया महला मांझ निवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से विचारिया सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीवया शब्द सवारी आस अमृत पीवे।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

आर टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला।

रहै जे सो धोवण पाए नानक बख्शे बख्शी है नाहे ता पाही पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रत्न कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिये सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया ना ओह भुला जग फिरे बेतालिया सलोक महला तीजा पै विच जम्मै पै मरै

नित सुरही सा तन दही बलोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होरे आवन जानिया।

लह परांत हुए जिस दात पौड़ी हों ढाडी वेकार कार लाया रात जह कहवार तुरो फरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम पूजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं आ।

बनासी सहज समावे, नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर ने काम रहाउ। सहजी आवे सहजी जाई, मन ते उपजे मन माही समाई, गुरमुख मुख तो बंद ना पाई, शब्द विचार छुटे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाई, नानक तिनके लागो पाई, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध

मुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दू।

अनमान्य अमृत रस पीजै रहाउ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

थाऊ। नानक गुरमत सहज समाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तब दा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा। गुर मिले मिले अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी

गुर बचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिय डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कै हृदय बसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारी उपर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्ट

भोगत सह का पाना रहाऊ, साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जारी, जियो पिंड सब रास तिसह की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना।

थी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताई मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर नि

केते पशु अपाय, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा। जीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर उपावहु। डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवै दिन राती।

राम का। मूढ़े फिर पाश्य पछताहे रे रहाउ, अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले।

सहुवत्स हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तरवसा शब्दवस पहु जाय, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु, तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहारु। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला, हौ बारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा दे मनहार, तेरे दान कीमत ना पवे इस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल, देहो सज्जन आसीसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवारी महला तीजा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

का अलाय बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावै दुखिया चलिया रोए रसना हर रस चाखिया सहज सुपाय गुर कृपा ते सच समाय साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवै निर्मल तार नाम समावै जो भांडा होए ऊंदै भांडै टिकै ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गुआरी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचो आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचो तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हम मैं मारी, नानक जो नाम रतिए तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई, गुर शब्द मारन।

साई। गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन कहो जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा। एक सते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा। पिन पिन वेखै हर प्रभ रंगा, एक अचरज एको है सोई। गुरमुख विचारे बिरला कोई, रहाउ सहज पवै प्रभ सब नीथाई। कहां गुप्त प्रगट।

रहाव। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला।

राम जपहु हो पवजल उतरु हो पार रहाउ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर शब्दी होए, गुरमत विरला बूझै कोई, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी ग्वार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे, नाम रखते पहुजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा, हम मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजै निज करवासा, नाम रखते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी, नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी, गौड़ी ग्वार री महला तीजा, सतगुर मिले वड भाग संयोग, हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए, रहाओ ज्ञान ध्यान

की धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी पर गासिया, बिन पगा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तेरी तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोबिंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे रहाओ ज्यों मिल बशरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर घर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसै जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी ग्वारी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवै अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बशरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी ग्वारी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी ग्वारी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहिया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहिया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम सुमाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

था। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपनी, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग ना मेरा क्या मुँह लै बोल है गुण विहून नाम।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जन

पालती राख नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरै हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पैमोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया
गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ। जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे। तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे। तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे। आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे। मेरा मन तन जियो रास सब तेरे जन नानक के साहा प्रभ साचे। गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने। जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ। जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो कित्ते हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा। हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ। सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाव। मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसीए गुरमुख जाए लहो कर अपना। कस चंदन हर जस कसीए मेरे मन हर हर हर हर हर जासी उत्तम। लैला हर मन हसीए हर हर आप दया कर देवे। ताय अमृत हर रस चखिए मेरे मन। नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए।

नरहर जित सेवै लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम

अन दिन अन दया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड़ पागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वड्डाही कर डंडोत पुन वड्डाही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाही ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा ने हियरै, तिन आग आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा।

मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियारै दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया।

अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तो वह पाम गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगानी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वड भागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवहु संतो मिल नाम जपाहा, विच संगत ना

गोविंदा वडभागी नाम समाई दियो। नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजू हूं।

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीओ, हर मेलो संत जीओ। मन लगा पाओ जीओ, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा।

तम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बिटोह कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसोह संतोह जी।

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउ पाईए हर राम सहाय रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जान जो वरतंता मनमुख मोए दिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कर्म भूम मह बूह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटे जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माहे होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी ग्वार री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कटी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत कर मान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नाया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वार री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवां तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे।

चतुर सियाना करने हार ना बुझे बिगाना अपनी गत मिते आपे जाने क्या को कहे क्या आख बखाने जित जित लाव है तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार दास अपने को दीजे दान कबहू न विसरे नानक नाम गौड़ी गुआर री महला पंजवा अनक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाण पया गल पहारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगाह सुबासीत मन मेरे गहो हर नाम।

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै गौड़ी गुआर री महला पंजवां बहुत दर्ब कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन देखों बिललाते त्रिग तन त्रिग धन माया संगराते रहाओ ज्यो बिगारी कै सिर दी जह दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम ज्यो सुपना होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन रार्थ काजा ज्यो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए उस खेत कारण राखा खड़े तिसकै पालै कछु ना पड़े जिसका राज तिसै का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा आप बनाहि आप करे रास नानक प्रभ आगै अरदास गौड़ी ग्वारी महला पंजवां बहु रंग माया बहु बिद पेखी कलम कागद सियान पलेखी मेहर

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा।

राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन ना सुनिए कतहु जाइए साध संगत बड भागी पाइए आठ पहर जिहवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाद इहा उहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसनी अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेडे एह रस राती बहुर ना छोड़े आन ना रस कस लवै ना लाई कहो नानक गुर पये है सहाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इस ही मधे बस्त अपार इस ही पीतर सुनियत साह कवन बापारी जा का उहां वसाह नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कमन सो जुगत जित कर पीजै पाए लगो तज मेरा तेरै कमन सो जन जो सौदा जोरै महल साहा का किन बिद पावै कमन सो बिद जित पीतर बुलावै तू वड साह जाके कोट बन जारे कमन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत निज कर पाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले साह कहो नानक गुर कै विसार गौड़ी महला पंजवा गवारी रैन दिनस रह इक रंगा प्रभ को जाने सद ही संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार है आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर ना जान है बिन निरंकारी हरख सोग दोहू ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रह।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म कर हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

कै रंग सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाकै वस खान सुल्तान जाकै वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुर मेटिया अम्यारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवां जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पहु काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपो होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

कहो नानक हो तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना।

परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए। गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर। सतगुर अपने कौ बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै। कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार। गौड़ी महला पंजवां, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया। जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम तां का भागी रहाउ। जां कहो रस हर रस है आयु, सो अन रस नाही लपटायु। जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जां

गुर बख्श मलाया, जिसका सब किश जिसका हर राया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख में सगले लाथे, सतगुर अपने कौ कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मानी रहाव, चरण रेण गुर की मुख लागी, हम बुद्ध तिन सगल त्यागी,

देखाया गौड़ी महला पंजवा दलाब दे पाई वडपागी नाम ना जपह ते आत्म काती मरना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम रहाव खात पीत खेलत हस्त बिसथार कवन अर्थ मृतक शिंगार जो ना सुन जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुरमंत्र दिरड़ाया केवल नाम रिद माहि समाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तरीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया

सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर मित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करनहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते चोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत

साध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सह

करत जन सू है ता कौ माया अग्न ना पू है। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

आई। गुर पूरे जब कृपा करी, पंथ नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाय।

रात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरहु अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आथाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाओ जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस भउ नाही जिस नाम आधारा।

ब्राह्मण जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना, अग्न सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सगल कटा के अंत।

से थोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जप हो नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै।

सह मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवे काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारी, पूरे सतगुर मिल निस्तारी, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाइय वडभागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाऊ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पड़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाई, तां का रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांती, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई परतीत, निर्मल जस पीवह जननीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसह

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैनै खाए तिस स्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने सवान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवां बिखै राज ते अंधला भारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाओ रोग

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वड भागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चढ़ उतरह पार साधु संग करहो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख ना होय प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाई है मान गौड़ी महला पंजवां जल थल महियल पूर्ण हर मीत प्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल

नारायण जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाओ आन साधि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप ते काढ़े आप गुण गोविंद।

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ताकि पूर्ण होई काल, जाकि प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराद। गौड़ी महला पंजवां, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याऊ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाव आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वध ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवां, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाओ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवां। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भव काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जापै।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी सतगुरु तुमरे काज सवारी रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारी बादशाह सहा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो हो भगवान।

पकड़ी प्रभ स्वामी गौड़ी महल्ला पंजवा हर संग राते पाहे ना जले हर संग राते माया नहीं चले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटह तुम्हारे नाई पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख न लागे हर संग राता अन दिन जागे हर संग राता सहज कर वसै हर संग राते ब्रह्म पौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कहो बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवा उदम करत सीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल कर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोबंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ताया पह पहे कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन बसेओ हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख सीतल मन पहे जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा धुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूरन पाई ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया
चरण कमल हृदय गह नानक तै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कमन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंद पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिखतरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहे के संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

तृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

हर तीखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, है कोई संत मलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांत तिस करो निहुरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बोहोरा, आनंद सुख पेटत हर नानक, जन्म किरतार्थ सफल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मुहे मार्ग दे बताई रहाओ, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बस्ते, मिल बात ना करते पाई, एक बस्त बिन पंच दोहेले, वो बस्त अगोचर ठाई, जिसका ग्रहो तिन दिया ताला, कुंजी गुर संपाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिवलाई,

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहा जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कै पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान इक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तै तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नार।

राखहु राखनहारी खेद करह और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस भाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग हुन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला।

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु। तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है। वड़े भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है हम बुद कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक। जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली। तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे। गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान। नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा। हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै। परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने। सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन। राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है। गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही। हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा। मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है।
सास सास हर त्याय रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। संत प्रसाद हर जापीए, सो जन दुख ना व्यापीए। जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्न ते। नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम। इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। रहाओ कटिए तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया। हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भउ गया। गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसरै राम नाम, ताहू को पीर। साध संगत मिल हर रवह, से गुणी गहीर। रहाव जा को गुरमुख हृदय बुध, ता कै कर तल लव निध सिद्ध। जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी। करन हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया। हर धन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवां।

विदे इंद्री वसलै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निध मैं जितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को तान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा सरन पयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हूं मैं तोरे इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरे प्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरे कहो नानक कृपा पही साध संगत निध मोरे गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निध प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाव एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरै बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो होए कृपाल ता सतगुर मेलै सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिय रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइय जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइय मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूट है सर्ब सुखा सुख पाइय सेव स्वामी सतगुर दाता मन वंचत फल आई है नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की गुरते पाई है पाले गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवां सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

हर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हों किस सोचो चितो, तौ लो दुखन भरे, जो कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, केते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो, तब हम मुक्त भए, जो लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए, जो लो पोट उठाई चलियो, तौ लो दान भरे, पोट डार गुर पूरा मिलिया, तौ नानक निरभय, गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो, सर्ब सुख आनंद मंगल रास, मान गोबिंद आग्यो रहाओ, मान अभमान दोष माने, मस्तक डार गुर पाग्यो, संपत हरख न आपत दुखा, रंग ठाकुर लाग्यो, बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टाग्यो, निरपौ भये संत भ्रम डार्यो, पूर्ण सर्वाग्यो, जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो न लाग्यो, साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जाग्यो, जन नानक ओड़ तुहारी परयो, आयो सरनाग्यो, नाम रंग सहज रस माने, फिर दुख ना लाग्यो, गौड़ी माला महला पंजवा, पाया लाल रतन मन पाया, तन सीतल मन सीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ, लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मूके, अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो, तो बिसरी तात पराई, कहो ना जाई एहो अचंभव, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच भये बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया, गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरनी रहाओ, सास्त सिमरत बेद बीचारी, महापुरखन इउं कहिया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख ना किन्हू लहिया, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावे, फिर तो पहरे पहरे, अनक बलास करत मन मोहन, पूरन होत ना कामा, जल तो कबहू ना बूजत, सगल बिरथे बिन नामा, हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की धूरा, गौड़ी माला महला पंजवा, मोको एह बिद को समझावे, करता होए जनावे रहाओ, अनजानत किस इन्ह कमानो, जप तप कशु ना सादा, दह दिस लै इहो मन दौरायो, कमन कर्म कर बांदा, मन तन धन भूम का ठाकुर, हौ इसका इहो मेरा, परम मोह कस सूजस नाई, एह पैखर पए पैरा, तब इहो कहां कमावन परया, जब इहो कछु ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किस आपे करता, अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन इहो रचन रचाया, कहो नानक करनहार है आपे, सतगुर परम चुकाया, गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाणी,
एह ओरे मूसे रहाउ, वर्त नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है पाई, ऊहा काम ना आया, तीर्थ नाए अर तरनी प्रमता।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा।

मन जीवै भाई जीओ, गुर प्रसादी सो हर हर पाही जीओ, सब किश प्रभ का प्रभ किया जाई जीओ, प्रभ को सद बल जाई जीओ, एहो निधान जपै बड़ भागी जीओ, नाम निरंजन एक।

नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूर्ण होए कामा रहा राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी बाज महला।

होर साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे मालक जाना थे हो कर हर

आओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना पुस्तक निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है तिन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे ऐन समग्न रह माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो एह विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो एह जग देख ताश उठतावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड़ता ही बिसरावे जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा साधु एहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है याते फिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे सुध सब बिसराई।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औध कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औध सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम भुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान है।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राखै आप वड्याई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आँखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे आसमाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है न ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करे पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नरम केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

कामन हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंदे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाव चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे बाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट किसको वाह वाह जे वाट दिखावे किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे किसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हौं मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईऐ हौ मैं जाए परम पद पाईऐ रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै कर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी परम पलाया जो उपजै सो काल संघारिया हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा ओहो अबनासी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नामो भूले जम का दुख सहना।

है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाऊ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार। जिनकै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्स परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे। सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द ते

है अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थोर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

केहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपे।

तेरा अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संत

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, तां प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटह मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेतह उपावन हारा, मर जमह फिर वारु वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाई, हर जी

आए साच ना छपे जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभलाए हमे माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावह सच गुण तास दासन दास नित होवह दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावै सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हिरदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हिरदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हिरदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हिरदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हिरदय धार नाम मिले पत पाईए नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाईए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम भलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावै तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए मन करहला सतगुर पुरख।

मन करहला अत निर्मला, मल लागी हों मैं आई, प्रतख पीर घर नाल प्यारा, विछड़ चोटा खाई। मन करहला मेरे प्रीतमा, हर हृदय पाल पलाए, उपाय कितै ना लभई, गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, कर जाए पावह रंग महली, गुर मेले हर मिलाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारिए, जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू, मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगती मल लह जाए। मन करहला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगाह पहनाया, हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या, गुरमुख कार कमाए, गुर आगे कर जोदड़ी, जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन करहला विचारिया, विचार देख संभाल, बन फिर थके बनवासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल। मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया, मनमुख फाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है, हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, सत संगत सत गुर पाल, सत संगत लग हर त्याई है, हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड भागिया, हर एक नदर निहाल, आप छड़ाए छुट्टी है, सतगुर चरण संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, विच देही जोत संभाल, गुर नौनिध नाम वखालिया, हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला, चतुराई छड विकराल, हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड़ भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया, जम मारियड़ा जम काल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवह बाहर पाल, गुर पुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे ना उतरे, गुर सेवा शब्द संभाल। हम पंखी मन करहले, हर तरवर पुरख अकाल, वड भागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल। राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां, अष्टपदियां, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। जब इहु मन में करत गुमाना, तब इहु बावर फिरत बेगाना, जब इहु हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कट कट चीना, सहज सुहेला फल मशकीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किसको इहु जानस मंदा, तब सगले इस मेलह फंदा, मेर तेर जब इन्ह चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किस कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सब किस सूझिया, जब इहु तावे माया अर्थी, नह त्रिपतावे नह ते सलाथी, जब इसते इहु होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला,
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर न नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हों मैं भागे, जास जपत वस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई वैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

करना, सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिट्यो सगल दुराव, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जा कै सह

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

बात कहे आप अनेक कह पांत जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दास राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

हरी रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाले रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रहया समाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभु माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ त्योहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरू चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवद बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझह सुमानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करो।

रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रहन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिख मरण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन ता फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ियारे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अथ प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलरिए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी तां कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गलहारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इओ मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद न आवै जियो कापर तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाईऐ सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ गुर शब्दै मेला तां पिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे एहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हमै मारे इन बिद मिलो प्यारे सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी, गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हम मारी, हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू, मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए, आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए, गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो, हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए, नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारी, रैन सुख सुत्ती जियो, अंतर उड़ तारी,

मुख कार्य सुवारी, जुग जुग एको सत्या सोई बूझै गुर बिचारी। मनमुख काम व्यापी मोहि संतापी, किस आग्या जाहि पुकारी। नानक मनमुख थाउ ना पाई, बिन गुर अत प्यारी। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिया जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती। अन दिन रह लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया। सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरियै। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इयों मरियै। खिन मह राम नाम किलविख काटे, पये पवित सरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पये मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई करे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जाती। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरह कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो। बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जी।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाईऐ हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो, जां चाख चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए। सदा हर रस पाए जां हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए,

धर्म गवाए, माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके, जा गुर शब्दी चित लाए, मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो, शब्द मन ना वसाए, माया का भ्रम अंध पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए।

कर आव हो नाह प्यारी। हों माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा हों सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया। मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया। लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वधाई कर लाल आया प्यारा। सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरखे उपजिया। दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है घर में है, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह। हर मिलिया कंत सुखदाई, गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा। मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे। जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे, कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सबराली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल तिनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुरु पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैण अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्चल बिरदाया। भगत वच्चल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधारै, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा के प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंत, सखी वासे आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवारै। पनीत करै तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए। गीत गोविंदह गाइयै, कल कलेश मिटह भ्रम नासह। मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम त्याइयै, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहिया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लाभ तित तित लगना।

सकै लवै न को। एक है आप अवर न हो, होवन हार होत सद आया। वाका अंत न काहू पाया, कीत हस्त मह पूर समाने। प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना। नानक गुरमुख हर हर ते जपना। सलोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक धन तन धन जन, आए ते परवान पौड़ी। आया सफल ताहू को गनिय, जास रसन हर हर जस भनिय। आए बस है साधु कै संगे, अन बिन नाम त्याव है रंगे। आवत सोजन न महराता, जाको दया मया बेदाता। एक है आवन फिर जोन न आया, नानक हर कै दर्श समाया। सलोक यास जपत मन हुए आनंद, बिनसै दूजा भाव। दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समा।

या भवजल करना यया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्मना हारी है गुरपूरे की टेक नानक तेह सुख पाया जान कह हिरै एक श्लोक अंतर मन तां बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपूरा उपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमरहो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीआं ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कह नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सोउ अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जेह मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारै आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी अनद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह अंध स्यों जा को होत कृपाल सदीव

पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मन माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम न करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावह बिन हर भगत कहां थित पावह। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी। गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए। गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आप गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी। चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती सीतल मन सुखी

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे। सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता। शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह घनो, साची दे विकार। हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जानै हौ कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जानै हौ भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हौ मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध। कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै अपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटै तुमारू, राम नाम स्यो कर व्यवहारू। चूरत चूरत साकत मुआ, जा कैरदै होत पाओ बिया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एत। गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग। ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत।

करो ना बिसरे गुण निड गोविंद राय पौड़ी टहल करो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए टहल मैल ताको मिले जाको साध कृपाल साधु संगत तो बसे जो आपन होहे दयाल टोहे ताहे बहु पवन बिन ना

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक।

पूरै अपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परहै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना होए खपते नन्ना कारण होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह बिकार नानक सो अरादी है अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधू अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पही मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटिया फासा फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ आपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाओ नाम औखद जे हृदय हटावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

देव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गवारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये, मन तन पये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अन दिन जापै प्रव निर्वाणी, भावै खसम ता वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहेब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लय समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ आना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतराई।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

हर प्रताप जन अवर ना जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे, पार जात इहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गमान ना मन ते हुटै सोच

अपमान आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साजन।

सगल कटा को देव दान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कमन मूल ते कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख

तिसका श्रम करे, संग सहाय किस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोय, गर्धब प्रीत पस्म संग होय, अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काड ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपश नाही कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा।

दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बाप।

मिथ्यारथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत किया।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेस है।

तिसलै लड़ लाई थान थनंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसै त्याहि सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहि त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसै त्याग कत अवर लुभावह।

मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै जेहे प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे जेहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जेहे प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जेहे प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो

का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी।

उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी

कई कोट भय अभमहनी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अबनास, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

आस तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख।

प्रभ भावे बिन सास्ते राखे, प्रभ भावे ता हर गुण भाखे, प्रभ भावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा श्रेय का आप सुहामी, खेले बिगसे अंतर जामी।

ब्रह्म परगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

अहंकार अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगहा कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठतावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ का

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब।

चार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखै ना कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै

ज्ञान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार संत का दुखी इयों बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै

नानक जो तिस पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

है भगवान जिस कैदी रह अघाई बहुर न तृष्णा लाग आई मार है रख है इको आप मानुख कह किस नाही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्म

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना

वे सुख निदान उन्हों बन आए, आपस कहो आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व कला परपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जा कै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम है थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो किसै चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले।

या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख पूजल हर दरगाह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक तां कह सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ऊट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देव।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल

पांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण।

केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बिचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बाद नरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिस की महिमा कौन बखानो तिस का गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना

नानक जिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान फलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबत भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप ना

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी,

आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावह सच धना।

एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाई तरिये संसार बिन भगति तन होसी चार सर्ब कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास

एक दर्श सुख हुए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

नानक पल पावहु, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाई।

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सघट माहे।

किने कछ करा आप भला कर तूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराज ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआऊ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार।

दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग ले।

ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रमतो घणो सदा संगारै नीच हरख सोग।

चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै।

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

संसार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे।

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक यो संजम प्रभ कृपा पाइय।

कौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु।

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संत।

हो मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण।

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना।

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई शरण जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

सतगुरु सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सो हन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनों दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देख ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

सच है सच सच्चे भावै जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवै तिन के मुख दारे उजले जिन हर हिरदय सच्चा भावै कूड़े आर पछाह सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै मुह काले कूड़े आरिया कूड़े आर कूड़ो होए जावै। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगहा सची पैनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमावे है ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जां सतगुर सराफ।

सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट वकार झूठ, वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले, सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले, जिन्ना सतगुर का

अनहार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जहां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निश्चल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करतै आप पचाया जन नानक गुण बोलै करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरे मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रह दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुख है नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचै मार पचाया।

रखै, हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया, नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया, क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर विचारी, सब पाप जगतै का तिन सिर लया, ओस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया, जे सोइने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर हल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, ता पिछले औगण बख्श लया, जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किल विक पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान, उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड़ बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओह ढोया कूक पकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया जन नानक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा। वडभागियां सुहागनी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर ज्योत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच ज्योत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्निया इको सुनिया।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिखा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जां दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हादी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

सतसंगत मह हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावह हर नाम सुनावह, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूज है पूज करावह, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई बिछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुह जम मारिया, तिस अगै पिछै ढोई नाही, गुरसिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया, जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जपे हो हर निस्तारिया, महला तीजा, हो मैं जगत पलाया, दुर्मत बिख्या बेकार, सतगुरु मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाहा है, सो करे जिस अंदर भिजै, जिन्नी एक मन एक अराध्या, तिनका कंध ना कबहू सिजै, तन तन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजै, सच सच्चा जिन मन भामदा, से मन सच्ची दरगाह लिजै, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजै, सलोक महला चौथा, साकत जाए निवह गुर आगै, मन खोटे कूड़ कूड़ आरी, जां गुर कह उठो मेरे भाई, वह जाहे कुसर बगलारी, गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कड्डे लड्डो वारे, कोई अगै पिछे बह मुह सुपाइन, ना रलनी खोटे आरे, ओना दा भख सो ओथै नाही, जाए कूड़ लहन भेडारे, जे साकत नर खवाइए लोचिए, बिख कड्डै मुख उगलारे, हर साकत सेती संग ना करियो, उए मारे सिरजन हारे, जिसका एहो खेल सोई कर वेखै, जन नानक नाम समारे, महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया, सतगुरु का रखण हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया, जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया, एहे गल होवै हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम विचारिया पौड़ी, सच सुतिया जिन्नी अराध्या, जां उठे तां सच चवे, से विरले जुग मह जानिए है, जो गुरमुख सच रवे, हों बलिहारी तिनको, जे अन दिन सच लवे, जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे, सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास ग्रास ना विसरे, से पूरे पुरख प्रधान, करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगे ध्यान, तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान, सौंदे वाहो वाहो उच्च रह, उठदे पी वाहो करेन, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन, महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईए नाम अपार, भौजल डुबदियां कढ लए,

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवै गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर पुरख निरवै।

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

आपणी आपे पछताणी अज राइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा नारायण नया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे। सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागती जो पुरख अलखे। सलोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप भलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखोट सब अंदेसे मिट गए जम का भो छोट काम क्रोध बुरे आईया।

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

के पूरे सतगुर भावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नू लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे गुर सिखा की घाल सच्चा थाए पावे बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों काम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे गुर सतगुर अगे को जियो लाए काले तिस अगे गुर सिख कार कमावे जे ठगी आवे ठगी उठ जाए।

कम कराई सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

के मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी।

नानकनंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

हथे पैर भौंदा फिर खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रह जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगै नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुटै बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवां कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवां बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए।

जो जा चंदी हे कड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी निहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदर।

एक जिस तो सदेवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया, जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से वड भागे, नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे, नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

अमृत को तिल बेठी आई पौड़ी, जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम त्यावो।

पतत पुनीत करता पुरख नानक सुनाव श्लोक दोहा महला पंजवा एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मन तन संदड़ी।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै मोहल्ला पंजवा प्रेतो की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ थन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ। पर हर लोभ अर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहाओ। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई।

तौ की जय जौ आपन जी जय। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोह मिलो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवता एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवता ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर गद कै पो लै बरो लै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै ही गै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावूं खोजत तन मह ठौर ना पावूं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊ एक भाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पाई मुक्त अन...

जब लग रात तब लग नहीं नेह रहाऊ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह

चौड़ कत बोड़ी, हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ, तुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पास पीवस ना झाग, चेतत चेतत निकस्यो नीर, तो जल निर्मल कथत कबीर, गौड़ी कबीर जी, जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी, विधवा कसना पई महतारी, जेहे नार राम भगत नह साधी, जनमत कसना मुह अपराधी रहाव, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

तिनकै सद बले हारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावै रहाउ। जेहे कट राम रहया परपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाकू कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान भी चारा रहाऊ सहज कलालन जो मिले आई आनंद पाते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु मन व्यापी मन है मार कमन सिद्ध थापी कमन सो मन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत ना हुई

तुझह ले तारूं, खिचह ता प्रेम कै चावक मारूं। कहत कबीर भले असवारा, वेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचों अमृत खाए, तेह मुख देखत लू कट लाए। एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बेगूती बहु विद भांति, को जारे को गढ़ ले माटी।

ममता राखै कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एको ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहु सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, यह मन दीन भय सुख देओ, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाओ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

चोर ठपी रे जी न लाज लाज तो है नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना

सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग कोठ गौरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ। कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलया मेरे भाई।

होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। आसन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह न

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआया स्थिर राखो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै, नातर था बेगाना रहाउ, निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मानिया, अलौती का जैसा

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत पर लो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्द उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाऊ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पांच

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाउ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज बहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

एक है बड हमही जिसे बजाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिन।

हाल खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है झूठे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन भये है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनी है तोल ना तुली है पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

देव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यो कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो रहाओ ज्यो उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोबन अर सुत।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी है भाव भगत भगवान।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले।

पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजै राग गौड़ी ग्यारवां आस पास घन तुरसी।

साधु परम प्रगट हुए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रनते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

गौड़ी लख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो

करै उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाऊ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर मह रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना।

तास गुण गाव है, तास बस है मोरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन, त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड़ भाग बसियो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन मानाना।

दे बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ए अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज मैं रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, तज चित्रै चित्राख चितेरा, सच्चा एह शत्रपत पासा, शक के ना रहो छाड के ना आसा, रे मन मैं तो सिन सिन समझावा, ताहे शाड कत आप बंधावा, जज्जा जो

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जां कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ, डर उर होए भागै, टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना, ढूंढत ही तह गए पराना, चढ़ समेर ढूंढ जब आवा, जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

अर्धह उर्दन वेरा अर्धह उर्दह मांज बसेरा अर्धह चाड उर्द जो आवा तो अर्धह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन

मगन पया ते सो सच पावे। मम्मा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो। एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह। जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव। रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव। रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया। एह रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत ना जाए परम।

होई। इहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान।

सत, बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव, आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सुर ही जाय, तो अनहद बीन सहज महबाय, सोमवार सास अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में है हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल सु

नाही, एनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारै सो एहे ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम।

जीवों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भए।

कौराज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर रि एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोसौ को न कह समझाय, जाते आवागमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर्व होए वो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रस

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको

चित तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

पताओ इत रंग नच हो रख रख पाओ पूरे ताल जाने सलाह होर नचना खुशियां मन माह रहाओ सत संतोख वजह दोए ताल पैरी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं दूजा पाओ इत रंग नच हो रख रख पाओ।

कहिया सर्ब निरंतर रव रहिया नाल कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन की।

बाद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै की चै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याह जे हुआ जा सहु मिलिया ता जानिया तेहो लोका हमें शब्द रव्या है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रह बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव।

भेख बहु करे, दुख बिख्या सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर धन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाह।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाउ कर्म धर्म सच साचा नाउ तां कै सद बलिहारे जाऊ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

सात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेते एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यों जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

प्रगट जाई, सच निशान ठाक न पाई। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत ना जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहा गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यो तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धू विनाशक। त्रिहो गुण आस नरास भई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो। जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई। गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवे। नानक राम नाम मन भावे, आसा महला पहला चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजे जे मन लागे,

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सेजै आवा।

पहला दो पदे तित सरवरड पहिले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबियले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पहला।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू नखूटस नाहीं आसा घर चौथा महला पहला।

रहाउ। धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक साधिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल

कर आया तिस क्या कहिए भाई जो किस करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद भावे नानक तां को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाव किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगाह बहुता बोले नाओ पवे बाजारी सतरंज

अगली ज्योत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाऊ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ है करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूसना होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बग्गै

कोई, गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

क्या शब्द समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड़ी।

आए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी होए, दूजै पाए ना लागै कोए, मूल लागे से जन परवान, अन दिन

आ सुख पाए संत संगत मेल हर गुण गाय नामी नाम करे विचार आप तरह कुल उधरनहार गुर की बाणी नाम बजाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया दुरमत महल सब दुरत गुआया आसा महला तीजा मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है दूजे भाए आत्म संघार है मेरा मेरा कर कर विभूता आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता मर मोया शब्दे मर जाए उस्तत निंदा गुर समझण आई इस युग में है लाहा हर जप लै जाए रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दूजे लो भाई नाम मिहूनी दुख जलै सबाई सतगुर पूरै बूझ बुझाई मन चंचल बहु चोटा खाए इथों छुड़किया खौर ना पाए गर्भ जोन विस्टा का वास तित घर मनमुख करे निवास अपने सतगुर को सदा बल जाई गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई निर्मल बाणी निज घर वासा

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हदूर।

अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाण।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सिओ चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणै सतगुर मिले सच सोझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ इस जुग मह निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

बैराग सतगुरु पुरख पाया वडभाग दूजे पाए पवह बिख माया भागहीन नहीं सतगुरु पाया अमृत हर रस हर आप पी आया गुरपूरै नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरे मन तन प्रेम नाम आधार।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ, नामै सुरत सुनी मन भाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर

बंदा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग भेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

आवत जात बार खिन लागे, हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई, हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा, कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे, तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे, हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे, कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए, जन नानक हर हिरदय सद त्याग हो। ता जय जय करे सब कोई, आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हो हर हर त्याए, ऐसे संत मिल है मेरे भाई। हम जन के धोवे तो पाए रहाओ, हर हर नाम जपो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए।

उपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हौ हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा। एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै, एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै। एक सती कहावह तिन बहुत कल पावै, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे देख।

दुर्जन मीत समानी, तुरिया गुण मिल साध पछानी, सहज गुफा में आसन बांधिया, जोत स्वरूप अनाहद वाजिया।

बैठ खलोई। वेश करे बहु रूप दिखावे, ग्रह बसन ना देई, वख वख परमावे। घर की नायक घर वास ना देवे, जतन करूं पुरजाई परेवे। रहाव तुरकी भेजी।

दुए मनुख पहचाव। तृतीये मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान साध कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जहो पिरह शिंगारी थिर सोहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

तनते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुभाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकरे

पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिए पांत, तृतीया तेरा सुंदर थान, बिगड़ रूप मन मह अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण,

करना, मुआ हुए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलूं प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्श

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई भाई न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना किन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार।

आउ दिनते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई यह नीत मुख उज्जल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

पंजवा हर रस छोड़ हो शह रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत का।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय आठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में है।

की जिसे प्राप्त किस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साध। ईट ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह। ता प्रीतम हो वह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ब्योहारा आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा धोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवा, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाऊ, ताप गया बचन गुरपूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे, रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा, पांचत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पाव है, किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुर भेटे।

काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरबहस्ती अर घोड़े

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा,

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन ला।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रवाब पखावज ताल घुंगरू अनहद।

नावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तां का जन्म मरण दुख भागै।

ही ब्राह्मणी सुदीते श्रेष्ठ आई रे पाताली आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे घर की बिलाई अवर सखाई।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुर गोपाल काड लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गा

मुक्त पए अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काढ़ लिए निरपव पए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य

त्रिण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोट मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवां, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवां, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है भाई रे रहाउ, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

पूर खजाना आसा महला पंजवा तीरथ जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप कुल विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा न

प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, रहाउ जाके निकट ना आवे कोई, सगल श्रेष्ठ उवां के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन

पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देहे जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पय पनीत संतन की तूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस पेटे।

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुरे अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे, बिना

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही

मुख हर हर बोले, सोजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहूरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे,

आनंद ने मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, कोस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ, उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत,

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवां, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना को।

कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिलिय तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छुट्टो।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ह ना ही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

लेहो रलाए नानक आए पए सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदक इशनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी।

के लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा आसा महला पंजवा दुपदा एक साधु संग सखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

सूप सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे सत

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गान हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाउ जाका दान नुखूटै नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटै कोई, मन वासाइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहि निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

काटै मन बहुत बिगास। जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटया सब मह लिखिया तुर का रहा। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सच

तेरा, जियो पिंड सब तिसदा, सब किश है तेरा, मान न माने तू धनी, तेरा परवासा, बिन साचे अनटेक है, सो जान हो काचा रहाउ, तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए, जिस गुरु पूरा भेट सी, सो चले रजाए, चतुराई सियाणपां कितै काम ना आई है।

सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवां लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन उठाए आप पूरे भगत से।

साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सरब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यो भावे त्यो राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना महा बिखम संसार बिरलै पेखिया छूटना।

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रहन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया भरपूर सच्चा

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

हर रंग माणीय आवहो संत मलाहा हर कथा कहानियां अन दिन सिमरह नाम तज लाज लुकानियां रहाउ जप जप जीवा नाम होए आनंद घना मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है तत विचार हो संत जन हो ताते बिघन ना लागे हीन

तो निद हर पाव सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसे सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंग री त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेट हर राए री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

हम शूटे अब उना ते होए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसम बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर

एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुलभावो अगम अगम अगाध बोध कीमत पर न पावो ताकी शरण सत पुरख की सत गुरु पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे

कै साध लुभाय झूठ धंध दुर्गंधे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटै बहुर बहुर जनमाते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवां निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे है करी मुहत रंग माण है फिर बहुर बहुर पछतावे है अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख भूलो आक नीम को तू मर जैसा संग बिसियर स्यों है रे तैसो ही एहो परग्रहो बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाहे तिन्ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरेओ जिस गुर पूरा कहो नानक पाव सागर तरेओ पये पनीत शरीरा आसा महला पंजवां दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ मूड मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांदे फिर पाछे पछतानी प्रभ मेरे सब बिद आगै जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख है नाही परवेसारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो हो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज भी।

महा के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना

ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल।

महा भौजन लंघीए सदा हर गुण गाव जन्म मरण निवारीए दुख ना जम पुर होए नाम निधान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

हर नाम चराहो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

किरमे अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधार

साध सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से परगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत है।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो हो संत संगाहे नाम त्यावो हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ सगले दुख जाहि जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आहि आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो।

हजार चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रह रहाओ जो प्रभ भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभ संग मलीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूज बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

साध संत मनाई प्रिय पाई गुण गाई पंच नाद तूर बजाई रहाओ कृपा पाई सहजाई दरसाई अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

आमन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा घर सतारवा असावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गोविंद कर हर हर मन प्यार हां।

बिनस ना जाए मर हां गुरते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवां एका ऊट गहो हां गुर का

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तरसा जी गगन आकाश, जिन सब थापी।

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होई, जिस बीती जाने प्रब सोई, आपे करता करे सो होई, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुरमान।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

कहावे है बीते, बिन नावे मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाणै, गुरमुख निर्मल नाम वखाणै। हर जियो आगै करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किल

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमै कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली।

सखाई अहलस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ कनक कामनी हेत गवारा।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खोआई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिक्के कड है ना आए राम ना कब हूं चेतेओ हुन कहन ना मिले खुदाए एक घर आवे है अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे है दुख जो तिस भावे सुख।

घर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, हो या शाई माई, इस जर कारण घणी विगुत्ती, इन जर घणी खो

कोटी हूं पीर बरज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया।

भाण होवै किस थै जाए रुआइए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला घर अठवां अष्टपदियां।

सत बीज कर ऐसी किरस कमावहु तां व्यापारी जानियो लाहा लै जावहु कर्म होवै सतगुर मिलै।

धनी साचा मुख नाम रहाउ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगह रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम ना विसरै साचे गुर बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या पवहंद संतर गुर का शब्द ना ची नहीं तत्सार निरंतर पंडित पांदे जो इसी नित पढ़ है पुराना अंतर वस्त ना जाननी काट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन मह तप कर है नित तीर्थ वासा आप ना चीन है तामसी काहे पये उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे है बिन गुर शब्द ना छूटे ही भ्रम आवे है जावे है एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर घर जानी है सो जा

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है

हूँ। हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवै ताकि कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखै वडियाई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचों दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वड्याई गुरमुख होए निहाली है।

ठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना भरम ना भेद है हर रसन रसाई।

इस करोड़ी दास तुम्हारी रिद सिद्ध प्राण अधारी ताके रूप न जाही लखनी क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा

सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सब ना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास।

हर कृष्णा ही गुर प्रसादी पाई है, अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक हो है सो लए पाए रतन विचारा। अंदर खोले दिव दिष्ट देख मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा, पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई। चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नावै कोई ना मनिया मनमुख पत गुआई जमपुर बद्दे मारी है बिरता जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिया नामे वडियाई जिसनो देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सब किस

नानिवह दूजा भाऊ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावह फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब हाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन शब्द हौ ना जाय नानक नाम रते तिन हौ मैं।

दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार एक ना बख्श मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए एहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है

शब्द रहे आ भरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जेजिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, बखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव, असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाहि खिन माहि, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाई, सब जग चलतो पेखी है, निःचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निःचल पावह ठाऊं, मीत साजन सुत

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़ी घर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख बीस

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रही आगाई अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नान

सत्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देव है बीरा तौ पढ़िया रहाओ, ईवड़ी याद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, इन्ना अखरा मह जो गुरमुख बूझै।

पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया ककै काम क्रोध परमयो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जलियो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ठ हुआ कग्गै घर कर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवही मूड़े परपंच तू

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला संत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे विचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहु ना आवै हार जियो ते कबहु ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करी जै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओ नव निद पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै विटहो कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहै से सूकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंढ लागे गुरमुख सदा संभाले यूं कह नानक जह मन तू धामदा तह हर तेरे सदा नाली सतगुर मिले तावत थमिया निज कर वसिया।

धुनि उपजै। जित शब्द जगत थम रहाया, तह अनेक वाजे सदा आनंद है। सच्चे रहया समाए, यों कह नानक सतगुर मिले है, तावत थमिया निज।

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, तां दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

कथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मोए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला तरिए जाया वै गुर सरनाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हाँ।